0: इस दुनिया में अगर जन्नत है तो बस यही है, यही है, यही है।
1: നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഹോം 92.2 FM. ഹോം ഇസ് എ ഫീലിംഗ്.

0: Stay connected with Home 92.2 FM. Home is a feeling.
1: धान धाधीना कत धाधीना धान धीना धीना कत तेरे के धाधीना त्रकदे घिना धा धा घिना धिन धिन धिन ना ना धिन धिन ना त्रकदे तेरे के धा धा धिना कत धा धा धिना त्रिकड़धा त्रिकड़धी त्रिकड़धा धा धा धिना त्रिकड़धा त्रिकड़धी त्रिकड़धा धटी धा के धिना के ना घिना ना धटी धा के